पर अर्जुन, उपाध्यक्ष स्मृति थापा, सचिव नरूपुन मगर, कोषाध्यक्ष देविका बुढा मगर एवं सम्पूर्ण टोल विकास समिति सुनसहरी गाउँपालिका 5 नारबाङ रोल्पा।

0: नमस्कार म गायक बद्री पगिनी अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ रेडियो जलजला 96.4 MHz।
1: हेलो
2: यो हो कार्यक्रम हेलो जलजला।
3: प्रत्येक दिन दिउँसो 2:15 to 3 PM
4: तपाईँको प्रिय रेडियो स्टेशन रेडियो जलजला
2: 96.4 MHz सुन्न नभुल्नुहोला
5: कार्यक्रम हेलो जलजला।